पानी घुमदै एक दिन दाई पर सरारी से आए पुगे बनी तारी दे मलाई बारी अहिले जान्छु भने थे जताई।

पर्वत फिर तराई हरू सब नेपाली देशी सलाख छोरी दिन सिपालो कुबुना गए चर जाती बाहुन खर भैंसीका चाहिँ मोल मोलिन गए हरम कुमारीहरू छोरी मैसँग बाँच्नु छ।

0: राधा सुरगा लोका को ओए सामालाए लागे राधा सुरगा
1: लोका अब ओए सामाने को सुरगा लोका याना और कहीं सही न रहा

जा कंचो भाई वंचन जा दीदी आज सात वर्ष की थी यहाँ विवाह उन गयो बुद्धि थी न रती

0: सामुदायिक पहुँच का लागि संचार रेडियो सैलुङ सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ज।
1: अल्पाइन पब्लिक स्कूल सैलुङ समाचार को सहयात्री।

एक मनो पिनी खीर खीरे जाता बाटे निकागाटे रा अमीलो दाई लाई कठाई बारी लाई लाई बाटे निकागाटे रा चरोड को खेली चारे जाना मिली बानाऊ रे ताई काटे रा के वन्नो हुन्चा समझे यो मने रुन्चा बानाऊ हाता को चूरा भाय झूरा मूरा जाऊला रे आसन लाऊला रे भाई नरी सवराना मैले मानी काला जाऊला रे आसन लाऊला रे भाई कठा को भरेंग इंचूला रे तारेंग माऊ मारे को बाचो रे दम पर हजार चारी कोटी को बदर माऊ महारे को बाचोरे चारी ना कोट को तिमला रातो माटो था माईरे खड़ को डोबाटो डांटे को होरा सोदा होरा पोरा था माईरे खड़ को डोबाटो आइले को बर्सा मारे को भाये को ताइरे इनी त्यो बाटो करकाला को पानी डाल के पोखी जानी को ताइरे इनी त्यो बाटो हताइरा मेरो यो पत्र काई गाला हर मीना बाजा दम देरा के गर्नु लारी बिर्साउ कस गरी हर मिना बाजा दम देर पटुकी फुको जीवन मेरो सुख माया रे दाललाई सम्झेर भन न भन बाला मेरो पा

मेरे पिहरा ले ना ता समझे पानी ना ता समझे पाने मैं समझूला दिन को दिन छत

नमस्कार रेडियो सैलम सामुदायिक एफएम बैनी थोप्लो 7 MHz बाट म पति प्रसाद सापकोटा आज विक्रम सम्बत 2083 साल आषाढ़ कहने पक्ष सन 2026 जुलाई 4 तारीख आषाढ़ 20 गते शनिवार चौथी तिथि अब स्तुति करूं आयु द्रोण कुमार कैसरी आओ साक्षेण कल्पय भरे श्री ऐमा दशरथ जी का शरीर प्रख्याति नई लग भरे शत्रु राघव का शरी क्षय राजा नौष कैसरी दौलत ले परिपूर्ण होस पवन जय नई परे का घरे मन राखुन सबले दुर्योधन समा

धर्म कुमार कैसर्याव श्री ब्रह्म ज्ञान याने विदुर कैसर ज्ञान हव शिशु जन्म मनुन बढ़ाले पने कृति उज्ज्वल सुत सहित का